श्री साई राम भगवान बाय योर इनफाइनाइट ग्रेस वी द यूथ ऑफ बिहार एंड झारखंड हैव गैदर्ड हियर इन योर डिवाइन प्रेजेंस टू ऑफर दिस गार्लेंड ऑफ सॉन्ग्स एट थाई लोटस फीट. Truth is God, God is truth. This offering, Satya ke pat pe jo chalta hai, emphasizes the greatness of Satya. Adherence to truth alone makes life easy and gives peace of mind. Sai always protects those who fearlessly follow the truth.

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी. मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन. वी आर ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन द सीक्रेट लैंड ऑफ भारत, विच इज त्याग भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि. वयम अत्र संजाता डिस्क्राइब्स द ग्लोरी ऑफ भारत.

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिनाकर मुझे आबाद किया।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिनाकर मुझे आबाद किया।